खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृतय सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन दयो महला दूजा।

एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कौन जो कुछ उन्होंने नाल बीतिया, जो कुछ उन्होंने नाल कीता गया। कहंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरियां बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप दे के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्दी हुंदी, मैनू हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्ष पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

कर तुम राजार काजी काजी बकबो हस्ती तोर। जेड़ा महावत हाथी ते बैठा सी काजी ओनू कह रहा है महावत तू अपनी सही मेहनत ड्यूटी नहीं कर रहा ते एदी सजा तैनू भुगतनी पैगी।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। पंकज दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले

शब्द गुर पीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग भौरन गुरता।

माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेश्वर वड़े भाग देवे परमेश्वर कोट पला दर्शन।

मैं ता कालू जी राय बुलार दे पटवारी सा आख्या मेहता जी आप नू राय जी याद कर दे हैं। उस बन विच बैठे हन ब्रिक हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन उन्हां मेहता जी आए राय जी ने आउंदे ही पुछया मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू सराप देंदा हां के तू सुख के तीला क्यों ना हो गया क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी राय जी जापदा गुरु नानक हुण नहीं आवेगा आख्या इवे ना आखो तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी जापदा ओ भी इत्थे आवेगी क्योंकि घर दी हालत तां बहुत खराब है 12 साल हो गए हन गुरु नानक नू घरों गया घर तो घर नहीं है खंडर बन चुके क्योंकि जिस घर का चिराग 12 साल हो गए हुण बार होवे जिस माता का इको एक बच्चा इको एक लाल होवे ते ओ भी 12 साल हो गए हुण गया होवे घरों ते कोई सुख स्नेहा ना होवे उस मां का की हाल होवे इत्थे माता त्रिपता ने रो रो के अपनियां अखां गवा दित्तियां हे नानक कदों आवेगा कदों आके अपनी सोहनी आवाज मेरे कन्ना विच पावेगा इत्थे माता तृप्ता अरदास कर रही है बेनती कर रही है कदों आवेगा बेटा असी तेनू पछाणिया नहीं बेबे नानकी ने तेनू पछाणिया के तू रब है तू परमेश्वर दा रूप है असी तां तेनू पछाण ना सके इत्थे जदों मेहता कालू जी राय जी बैठे अरदास कर रहे इत्थे बेबे नानकी सनेहा पहले ही गया होया सी बेबे नानकी रथ ते चढ़ी हुई सुल्तानपुरी तो आ रही है सुल्तानपुर तो आ रही है ते रस्ते विच की वेखिया जंगल विच ब्रिख दे हेठा राय जी बैठे हन नाल पिता कालू जी बैठे रथ रोकिया पुत्र के आई राय जी कहन लगा मेहता जी नानकी आ गई जे आख्या नानकी आ गई है तो हुण नानक भी आ जाएगा सत सगत बोलो श्री क्योंकि स्याणे अनुमान ला लेंदे हन जे बदल आ गए हन तो बरखा भी होवेगी आख्या नानकी जा कर मां दा हाल वेख बेबे नानकी जदों घर आई ते घर की वेख्या घर घर नहीं है खंडर बन चुके आवाज दिती मां माता तृप्ता ने आवाज पछाणी के ता नानकी है और नानकी आ वेख ना घर दी की हालत है नानक दे प्यार विच मैं ता रो रो के अखां भी गवा दितियां अज 12 साल हो गए हन नानक नु गए ते एक एक साल विच मैं एक एक चोला तैयार कीता है नानक वास्ते आ 12 चोले तैयार हो गए सत सगत बोलो श्री बेबे नानकी ने जदों ए घर दी हालत वेखी मां दी ऐसी हालत वेखी पिता दा ए हाल वेख्या ते कोठे ते चढ़ गई बेनती कीती ओ वीरा तू मैनू क्या सी के बेबे जदों तू मैनू मन करके याद करेगी ना मैं तेरे कोल ही होवां मैं 12 साल हो गए तेनू इस वास्ते याद ना कीता के खबरे मैं तेनू याद करा ते उस वेले पता नहीं तू किस पापी ने तार रहा हुए पता नहीं किस पुन्नी दे पुन्ना नू भाग ला रहा हुए ते मैं तेनू इस वास्ते नहीं बुलाया लेकिन घर दी हालत माता पिता दा हाल वेख के हुण रहा नहीं जाऊंदा वीरा छेती घर आ
उस वेले गुरु नानक सच्चे पातशाह 2700 को दूर बैठे सन। ते जदों ए बेबे नानकी दी पुकार पहुंची, गुरु नानक पातशाह ने आख्या, मर्दानिया अखां बंद कर, वापस चलिए तलवंडी। सात संगत बोलो श्री। ते जदों अखां बंद कीतिया, अखां खोलिया, की वेख्या, तलवंडी दी गली विच गुरु नानक पातशाह नाल बाला ते मर्दाना। मर्दाने ने आख्या, पातशाह वापस क्यों आए हो? आख्या, बेबे याद कर रही है, बेबे नानकी याद कर रही है। इत्थे बेबे नानकी आख्या, वीरा तेनू मक्खन बड़ा चंगा लगता है ना, तू बचपन विच आ मक्खन मैं रिड़कदी सां, दही रिड़कदी सां, मक्खन कटदी सां, तली ते रखदी सां, कहिंदी सां कि मैं पहला अखां खोलांगी कि तू पहला मक्खन खावें, ते तू पहला तली तो चुक के मक्खन खा लैंदा से। अज भी मैं मक्खन कटदी हां, दही रिड़की, इत्थे बेबे दही रिड़क रही है, इत्थे गुरु नानक पातशाह तलवंडी दी गली विच आ गए। मर्दाने ने आख्या, मैं भज के जाऊंदा हां। आख्या, ना भाई ना जा। आ मर्दानिया, ए जेड़े तलवंडी दी गलियां दे कख पए हन ना, ए भी जन्मां दे तपस्वी हन, ए भी चरणा दी शो मंगदे हन। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मर्दाने दी बांह विच बांह पा लई, ते चूमदे होए जा रहे हन, ते की जपदे हन।

मैं आवांगा। आ वेखना घर दी की हालत हो गई, मां ने रो रो के अखां गवा दित्तियां तेरे प्यार। गुरु नानक पातशाह आए, आवाज दित्ती, मां माता त्रिपता ने पछाण लिया, ए तां मेरे लाल दी आवाज है, ए तां मेरे नानक दी आवाज है।

मां दे गल ना लगे। माता त्रिपता ने आख्या, बेटा मैं तेरे स्पर्श तो कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी। हजूर कहन लगे, ए केड़ी वड्डी गल है मां, एक बारी अखां बंद करके खोल दे। अखां बंद करके खोलिया ता की वेख्या, चौदहवीं दा चंद्रमा चढ़िया होया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े। आख्या, बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं, ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने यही कहिंदे हन कि इस हाथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मूंह ते चपेड़ मार तां हाथ विचों बुरकी डिग पैंदी है। मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए, मैं तां कालू पिता दे चरणां नूं हाथ लाया, चरण स्पर्श कीते। पिता कालू ने गल ना ला लिया, बेटा मेरे तो पहले ही राय बुलार नू मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठा बैठा है, गुरु नानक कूक रहे। गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठा, की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंदा है कदे इस पासे मुंह करके बैठे। सोचदा है खबरे इथों ना आ जाऊं, फिर सोचदा है खबरे दूजे पास्यों ना आ जाऊं, मेरी पिठ ना हो जाए। ताई आ सोच रहा ते पिछों आवाज आई, राय जी असी आ गए। आए गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या, सामने गुरु नानक खड़ोता है चरना ते डिग पिया। आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन होके जप रहे हैं, की कह रहे हैं।

गुलाब दे फूल खिड़दे ने, जद पानी कट जावे ता फूल दे पत्ते कुमला जांदे ने। इसे तरह अज तेरे ते जवानी है, बुढ़ापा आवेगा तेरी ये जवानी कुमला जावेगी। थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना है।

भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कवेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंग है टिकया उठ पवेगा रोन की केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सो गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ए भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है

तेरी रजा जिवें है वो परवान है, ओदे विच मैनू कोई हक नहीं के मैं कुछ हुक्म अदूली करा। ये एक संसार दे सामने नमूना पेश कीता है कि सिदक तो नहीं डोलना जालम, भावे जिन्ना मर्जी जुलम करदा, आखिर जित नाम सिमरन और सच दी हक दी हुंदी है। हजूर गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है, कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। ये झूठ दे बदल ये सदा अस्थिर नहीं रहिंदे, लेकिन सच दी आवाज सदियां तक बल्कि जुगां जुगांतरां तक बुलंद रहिंदी है। और उस सच दी रोशनी दे विच अनेकां ही राही उन्हां नूं मार्गदर्शन प्राप्त हुंदा है। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरु दे भाणे विच किवें रहना है,

0: Önden de kor şavkar tatlı verdi.
1: Şavaş. Şeria.
2: Mal paran yandır.
3: Çok umdular.
0: Ağır! Cemre! Her hafta! Gel Cemre!
4: मेरी बॉडी तो देखने पागल हो जाएगी। मेरी रिंग सिंगिंग से कालू इंच देसी की ओर दीवे वालों।

झूठी हो सकती है पर तोड़ा झूठी नहीं हो सकती। तोड़ा सुच्चा है, हाथ सुच्चा है, ना बंदा।

कीर्तन हर हर गाई, हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज।

रंग चाड़े है, कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसी बंदे नू मालक दी महान बख्शिश होवे ते असी कह देने पई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया, पर खुलिया किवें? मालक दा कीर्तन गाउण।

दुनिया दे मालिक साहिबे दो आलम बानी के बोह नाम के जहाज साहिब धन गुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इन्हों बचना का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेह किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नूं मिल सकना साहब कृपा करते ने बख्शिश करते ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहते ने

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद के पिछे पपी पपी प्या करदा साहब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़ियां करदा है, मेरे पातशाह किते स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मींह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रसना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

में जे भाई सत्ता समुद्रां दे पानी दी स्याही बना ले जावे। कलम करो बन राय सारे जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावन।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, मेरे मालिका कर कृपा मेरे दे।

जमरौत दी जंग विच सिखां ने पठाणा नूं ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नूं हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलुए दियां गल्लां होण लगियां। नलुए तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नूं जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नूं चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे पड़दादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: तरती लाल सूही हो गई, सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंच दिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तोला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ होते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउणा नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

साहिब अस्त फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन सिख राज दे पहले सिक्के ते लिखे गए।

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम से सिक्का नहीं चला

माधुदास बैरागी। गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुट्टिआ, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया। उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया। योग सिखिया ले फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दखण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदिया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां, क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जानदा है। उधर चेले जंगल विच भजे गए, माधोदास बैरागी नूं जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दीआं अखां नहीं हुंदीआं। तां माधोदास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हों पलंग तो थले डेग देंगा
और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं, पलंग नू उल्टान दी कोशिश की थी, पर माधोदास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सके। जद माधोदास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टान वास्ते, पलंग ना उल्टा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधोदास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया

मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया, मैं गोबिंद सिंह हां। बैरागी ने फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं तकदिया प्यास नहीं सी लेंदी। उसका शरीर कंब रहा सी, बुल कंब रहे सन, आवाज कंब रही सी आवाज। होली जी कहन लगा, तुसी गुरु गोबिंद सिंह? गुरु जी हस पे अते उसके तप द्वारा कठोर बने हुए शरीर नूं इउं तकिया जिवें उन्हां दियां अखां दो हाथ होण, अते उसनूं घुट के अपने सीने नाल ला लैण लई उतावले हो। अते तीर जे बोले उस माधोदास बैरागी नूं, तू कौण है? ता माधोदास बैरागी चरणा नूं चुमदा होया कहण लगा, मैं तुहाडा बंदा गुरु जी, मैं तुहाडा बंदा। मैं तुहाडी बड़ी उड़ीक कीती, बड़ा ढूंढिया, बड़ा लभिया, अज तुसी मिले, मैनू शांति नसीब होई, मेरी मंजिल मैनू मिल गई। गुरु जी ने माधोदास नूं उठा के अपने कोल बिठाया, प्यार नाल कहा, जानदे हुए भी पुछदे ने, तू बैरागी क्यों बने? तां माधोदास ने अपनी कहानी सुनाई, एक हिरनी दा मैं शिकार कीता, ओ मरी, ओ दे बच्चे भी तड़प तड़प के मर गए।

शंकर भगवान दे धर्म सपत्नी माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारियां नूं बुलाया है पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जाने की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नूं कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरों वीरभद्र वगैरह पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा, जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया। तां उस वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ के यज्ञ की अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसन लग पए जिउं प्रचंड महातांडव नचदी होई परलवा गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण की, शिवजी भगवान ने महाभैरों नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया, अपने अलेटां

बंदा सिंह बहादुर जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनिया फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच

बहुत कमाल दी गल कर दी। सप डंग मार देंगे कहते ने लोग सप तो बचने की कोशिश करती कि सप का डंगया होया मनुख बच नहीं सकता। पर फरमाते नहीं

जहां बुआ खोलिया इस हिरदे दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठा है, किधरे होमे, किधरे लोभ, सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढ़ेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे थां, थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै इह तां गल भुली गई सी, आया क्रोध दी बां फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया गलो फड़ के बाहर छड़ आया। जामुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बां फड़ दे बाहर छड़ आंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बाहर अंदर सारिया नू कढ़दा रिया, एक एक नू कहन लगा निकलो मैं परमात्मा आ गया उनू बिठाने। ओ कहन लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया है, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, इनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ़, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं। हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे, इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

आओ भाई, बंदी छोड़ नूं अरदास कीती सी ना। पातशाह सी कैद होए पए, मेहर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी कर, अपना पल्ला पकड़ा। गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दे। पंच दूत मूड पर ठा